को आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले। ये तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है? ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हें न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है समाज से कि वो रोज ले इस देवी की आंखों से ये पढ़ती।

संविधान है जंगल का कानून इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है इसका उन्वान है जंगल का कानून इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले ये तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है एक मांग है ये समाज से कि वो लोच ले इस डेरी की आंखों से ये पट्टी ताकि ये देख सके मचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे